नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कबीर साहब की एक खूबी है कि वे कभी भी सत्य को छुपाकर या धीमे स्वर में नहीं कहते। वे भरे बाजार में खड़े होकर सबको सुनाकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है। आज कबीर साहब की ओर से आप सबके लिए एक सीधा संदेश है सत्य को थामने का। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहा भला होएगा नहीं तर भला न होए। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई।

श्रोताओं, इस दोहे की पहली पंक्ति में कबीर एक साक्षी की तरह खड़े हैं। वे कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, यानी मैं तो निरंतर पुकार रहा हूँ और मेरी बात सबके कानों तक पहुँच भी रही है। लेकिन सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, उनका सीधा संदेश है, राम कहाँ भला होएगा। यहाँ राम का अर्थ उस खट खट वासी चेतना से है, उस परम सत्य से है। यदि उस सत्य को याद रखोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो ही जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन इसके बाद कबीर एक बड़ी चेतावनी देते हैं, नहीं तर भला ना होए। यहाँ नहीं तर का सीधा मतलब है वरना या नहीं तो। कबीर साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बात को अनसुना कर दिया, अगर उस राम तत्व को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा भला किसी और तरीके से नहीं हो सकता। संसार की बाकी तमाम उपलब्धियां तुम्हें सुख तो दे सकती हैं, लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर उससे जीवन में उतारने के बजाय टाल देते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, कबीर की आवाज़ तो सबके दोस्तों कबीर की आवाज़ तो सब तक पहुंच रही हैं, आज आप तक भी पहुंची हैं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या वाकई अपने कल्याण का मार्ग चुन रहे हैं? याद रखिए, नहीं तर यानी अन्यथा पछतावा ही हाथ लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछी रतो ते लाहो प्राणी जात। दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की। तिमिर अंधेरा, रात, और ये रात जो है वो कब खत्म होगी उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी। देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं रात का। संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं। हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है। रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि देखिए हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं। रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते? रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं, लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को। तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है। अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा। हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं, साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं, और इसलिए विश्व। और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है। राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं। आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया, देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है, और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है, और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है, और राम प्रहर में इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये दुरितांचे तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा? जब सूर्य आएगा। और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितांचे तिमिर जावो, जावो ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। विश्व स्वधर्म और सूर्य कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है।
बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, यह सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आळंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पूना के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए। और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है। और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है, या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में वो आपके साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है।

कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है। और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3.30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं। सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, करेंगे। और फिर अगले एपिसोड में हम विश्व, स्वधर्म और सूर्य, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके ऊपर जब मैं चिंतन करता था, तब एक्चुअली विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, जो कुछ पसायदान में माउली ने मांगा है वो सब भलाई के लिए मांगा है। तो विश्व और जगत फर्क है। जगत मीन्स अर्थ,

और जगत का बहुत अच्छा मतलब भी है, जिसको गति है ऐसा जगत। अर्थ जो है वो घूमती है, जगत जो है वो अर्थ, और फिर विश्व क्या है? मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है, जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ, और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु जो कुछ जिंदगी है जीवन है उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है, उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने, जगत नहीं, जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया माउली ने, शब्द प्रयोग किया है विश्व का। और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना, इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है, और इसलिए शायद जिंदगी, हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा। तो ये अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को ये अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था, और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका, उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स, और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है, अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएंगे। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, रावण के पास आए और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर, पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची,
उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा। क्या हो गया? रावण ने क्या किया, जो नवग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाने लगा और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए, जाते हैं ना। और हमें अनुभव ही होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नजर ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नजर और अच्छी नजर। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व जो है ये नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब ये हमारा क्या है, स्वधर्म में सूर्य पाहो। स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है? धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है। हम धर्म कहते हैं तो सब सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं। लेकिन धर्म और अधर्म उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज विश्व स्वधर्मे सूर्य बहो, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने। अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जी हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार ऐसे दौराहे या चौराहे आ जाते हैं कि नया रास्ता तलाशने को जी करता है। कई बार लगता है कि हम जिस दौड़ में भागे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं। ऐसे में एक दोस्त चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमें बताए कि भाई सही क्या है और गलत क्या हो सकता है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज ऐसा ही एक प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे गुस्से की, यानी कि एंगर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, आज अगर हम अभी पीछे की अपनी बातचीत को देखें तो हमने टेंशन को देखा था, हमने खुशी तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन एक मुद्दा, एक ऐसी जिंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसी फीलिंग जिससे हम में से हर कोई रोज दो चार हो रहा है, वो है गुस्सा। और एक जो पूरे प्रोसेस की हमने बात की थी कि हमारा जो थॉट जनरेट होता है वही हमारी डेस्टिनी भी लिख सकता है, लिख देता है,
1: लिख ही रहा है,
0: लिख रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे प्रूफ
1: हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी वो बना रहा है ना, थॉट से पर्सनालिटी बन रही है और पर्सनालिटी जैसी होगी वो डेस्टिनी है, तो दैट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
0: यस, और पर्सनालिटी जो है वो एक्शंस को भी गवर्न करती है हमारे। तो उसमें जो गुस्सा है वो एक ऐसा इनकॉर्पोरेटेड हिस्सा है। मुझे आज कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो गुस्सा ना होता हो। तो हम सब जानते हैं ये बात कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा नहीं फील करते गुस्सा करने के बाद। लेकिन कुछ रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम चल रहे हैं, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड इन दिस होल डिस्कशन दैट जो रॉन्ग बिलीव्स हैं वही रॉन्ग थॉट जनरेट करते हैं।
1: सो हाउ कैन, वो बहुत पक्की हुई हुई है ना अंदर, तो जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे और चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो वो ही तो फाउंडेशन बनी रहेंगी हमारी थॉट प्रोसेस के। तो तब तक वो चीज़ नेचुरल लगेगी क्योंकि वो फाउंडेशन में है। तो उस फाउंडेशन को कहीं ना कहीं चेक और चेंज करने की जरूरत है।
0: एक सबसे मुझे जो रॉन्ग बिलीव गुस्से से जुड़ा हुआ लगता है, जो हमारे फिर वो थॉट्स को जनरेट करके हमारी डेस्टिनी तक पहुंचता है, वो ये कि गुस्सा तो जायज है। मेरे साथ गलत हुआ है तो मतलब, या ये गलत है, मुझे तो गुस्सा आएगा ही, मैं कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो जायज है
1: और गुस्सा आना ही चाहिए। यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स कि गुस्सा तो आना ही चाहिए, गुस्से तो करना ही है, मतलब व्हाट इज द अदर ऑप्शन, वी डोंट इवन हैव अ सेकंड ऑप्शन, मतलब गुस्से के अलावा दूसरा क्या,
0: अगर क्या बचता है, क्या उपाय है, अगर मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं,
1: तो क्या करूं और कौन सा सोल्यूशन है चीजों को रेक्टिफाई करने का। लेकिन जैसे आपने ही अभी कहा कि हमें गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता, एंड नॉर्मल ह्यूमन नेचर अगर हम देखें तो हम वही चीजें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इवन इफ दे आर रॉन्ग। मतलब जैसे आपने कहा ना कि कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, देयर इज नॉट रियली एनी थिंग लाइक सही एंड गलत, वेरी स्पेसिफिक हु आर वी टू से कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। कुछ बातें हैं जो विच इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ, यू कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन वो ट्रूथ भी आपके लिए ट्रूथ तब बनता है जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तब तक शायद आप भी उसको रॉन्ग मान के चलेंगे, यू नो, तो तब तक नोबडी हैज द अथॉरिटी टू टेल यू कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग।
0: समवेयर डीप विद इन व्हेन वी फील वो उसको करने के बाद जायज मानते हुए भी जब हम कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा,
1: अच्छा नहीं लगता। तो वो जो फीलिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो वो फिर मेरे लिए राइट नहीं है। अगर किसी को गुस्सा करने के बाद अच्छा लग रहा है, देन ही शुड गो अहेड एंड डू इट। यू नो इट्स ऑल अबाउट दैट। सोसाइटी और एनीबडी एल्स और यू एंड मी आर नोबडी टू से कि आपको गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को खुद से पूछिए कि करने के बाद आपको कैसा लगता है, एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें अच्छा नहीं लगता है। वेरी रेयरली शायद हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं ये तो करना जरूरी था, लेकिन फिर भी करके अच्छा नहीं लगता।
0: अच्छा, एक अभी एक ऐसी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन यही लेते हैं कि कोई एक ऑफिस में है और उनके सबॉर्डिनेट्स हैं और काम नहीं हो पा रहा है, तो वो गुस्सा करेंगे, सब पे चिल्लाएंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ, टारगेट्स अचीव करने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, और बाद में जब उनसे बात की जाए या कुछ करे तो कितना गुस्सा नहीं करूंगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो मैं क्या करता, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। बाद में कहते हो कि आप कहते हो फिर कि गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते थे कि टारगेट्स भी अचीव हो जाएं, उनके काम भी हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यही तरीका सीखा है ना. मतलब उन्होंने कि हमने ही, मैंने भी, मतलब सबने, हमारे पास, हम समाज में जिसमें रह रहे हैं, हमने यही तरीका सीखा है कि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, मेरा सबॉर्डिनेट काम ही नहीं कर रहा. तो इस सिचुएशन में वो क्या करें कि गुस्सा ना करना पड़े और जो चाहिए वो भी हो जाए.
1: यही जो आपने बात अभी बताई, ये भी तो एक बिलीफ है ना कि गुस्सा इज द ट्रिगर. गुस्सा काम करवाता है, गुस्से के बिना काम नहीं होने वाला है. तो जब तक वो मेरा बिलीफ है, आई विल नॉट इवन ट्राई अनदर ऑप्शन. यू नो, इट्स इतना ग्राउंडेड इनसाइड कि गुस्सा ही काम करवाता है. प्यार से बात करेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे. कोई अपना काम नहीं करेगा, सब आराम से बैठेंगे. पहली बात तो मुझे अपने आप से ये पूछनी पड़ेगी कि जो मेरे सीनियर हैं, वो मेरे से किस तरह से बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. क्या गुस्सा मेरे लिए एक ट्रिगर है? अच्छा, कि अगर मेरे से बड़े, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे सीनियर हैं, जब वो मुझे गुस्से से काम करवाते हैं, डू आई परफॉर्म बेटर?
0: आई डोंट थिंक सो.
1: बिकॉज जैसे ही किसी ने मुझे गुस्सा किया, तो पहले तो आई गेट अ लिटल अपसेट, यू नो. तो अब जैसे ही कोई अपसेट हो गया, उसका काम पे से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का कोई मार्जिन नहीं है. वो एक तो अगर वो आपके सीनियर है, तो देयर विल बी अ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज. यू नो, आप तो बोल के चले गए, काम भी हम कर देंगे, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि काम हो ही जाएगा, लेकिन कैसे होगा? यू नो, अंदर से इरिटेट होके, कुड़कुड़ के, और आपके प्रति कैसा सोच के, नेगेटिव एनर्जी. तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो रिलेशनशिप है, वो नहीं बिल्ट अप हुआ. काम हो गया, नो प्रॉब्लम. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज माय एम इन लाइफ. सिर्फ किसी भी तरह काम करवा लेना, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक, एट द कॉस्ट ऑफ माय हैप्पीनेस. काम कर भी किस लिए रहा है? हर एक इंसान जो उस ऑफिस में काम कर रहा है, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वांट्स हैप्पीनेस, इवन द बॉस एंड इवन द जूनियर. तो फिर हम ऐसे बिलीफ सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करके क्यों काम कर रहे हैं, जिससे हमारी खुशी बढ़ने की बजाय हर पल घटती हुई दिखाई दे रही है.
0: वंडरफुल. नो, सो एंड हियर अगेन, यू नो, दैट थॉट एंड डेस्टिनी कम्स. लाइक, अगर वो जो डेस्टिनी ये हो गई कि आपका रिलेशनशिप जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ,
1: अगर आप नॉर्मली आज देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई बॉन्डिंग कहाँ है? यू नो, जैसे ही आप मुड़कर बाहर गए तो आपके पीठ पीछे, क्योंकि इट इज लाइक ऑफिस, इट इज लाइक आई डोंट लाइक माई बॉस. देर आर वेरी फ्यू बॉसेज जिनके लिए आप कह सकोगे कि आई लाइक माई बॉस, एंड दैट बॉस विल हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. नहीं तो दैट लाइकिंग विल नॉट डेवलप. तो अगर मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझसे गुस्सा करके काम करवाए, तो नेचुरल है दूसरा भी जिससे मैं काम करवाता हूँ उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा. मेरे को हर टाइम अपने आप को उस पोजिशन में रखना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू सी. अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से ज्यादा अच्छा काम होता है, देन लेट मी यूज दैट वेपन. लेकिन इफ इट डजेंट वर्क, देन आई शुड नॉट. अभी एक हथियार मेरे हाथ में है, इफ आई नो दिस डजेंट वर्क, तो फिर मैं उसी हथियार को क्यों यूज कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर? अगर मेरे से कोई प्यार से काम करवाए, मैं डबल एफिशिएंसी से काम करूंगी. नाउ आई नो देन दैट वेपन वर्क्स, तो व्हाई एम आई यूजिंग द रॉन्ग वेपन?
0: लेकिन अगेन, प्यार को वीकनेस समझ लिया जाता है. यू नो, दिस इज अगेन लाइक, मैं समझती हूँ कि एंगर मेरी ताकत है. मतलब अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो बंदा जो है, या जो जो भी सामने वाला है, वो समझ जाएगा कि ये गुस्सा है, इसको ज्यादा फिडल नहीं करना है. सो वो फियर जनरेट कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं. तो दूसरी तरफ अगर मैं प्यार कर रही हूँ, मतलब ये एक नॉर्मल, अगेन दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ, कि अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो they're taking me for granted, you know, they're not even listening to me. I shout.
1: True, but maybe only for a little time. And one very strong realization is ki agar pyar se kaam nahi ho sakta to gusse se bhi nahi ho sakta. That's for sure. Agar aap pyar se nahi, kyunki aapka mool sanskar to pyar hi hai. किसी का भी, हर एक को प्यार ही अच्छा लगता है, गुस्सा नहीं अच्छा लगता. तो प्यार अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाया कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, तो गुस्सा भी मोटिवेट नहीं कर सकेगा. हाँ, ये डेफिनेटली है कि आपकी रिश्तों में कड़वाहट आ जाएंगी. ये हो सकता है कि आपने अगर प्यार से काम किया, हो सकता है 0.1% चांस कि आपका काम ठीक नहीं हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर. लेकिन आपकी रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ गई है, और वो बढ़ने से कारण जो नेक्स्ट टारगेट आप पिकअप करेंगे उसमें आप एज ए टीम और भी अच्छा काम करेंगे एंड यू नो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वो टीम की बॉन्डिंग है वो मिरेकल क्रिएट करेंगे. लेकिन अगर हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल देखा कि हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है चाहे किसी भी हालत में अचीव कर लिया, इट वोंट वर्क. लेट्स से इट्स अ टीम, आप एक टीम लीडर हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और करते करते आपने एक महीना बहुत मेहनत की सबने एंड बस दो दिन पहले समथिंग गोज रॉन्ग, एक क्राइसिस सिचुएशन है. नाउ यू आर द बॉस ऑफ दैट टीम, आपकी मानसिक स्थिति उसमें कैसी होनी चाहिए?
2: स्टेबल.
1: या हम लीडर को ही वो डिफाइन करेंगे कि लीडर वो जो स्टेबल रहे कोई भी चीज में, चाहे वो एक परिवार का लीडर है कि परिवार में अगर कुछ क्राइसिस आ जाए तो स्टेबिलिटी चाहिए. अब अगर उस टाइम वो टीम लीडर स्टेबल रहता है, अपनी टीम को साथ लेके चलता है एंड प्रायोरिटी अपने लोगों को रखता है ना कि उस टारगेट
2: को.
1: सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, प्रायोरिटी काम है, काम टारगेट, मतलब आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग विल फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट बट इट इज द ट्रूथ. प्रायोरिटी शुड बी पीपल
2: बिकॉज पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म दैट. एक्चुअली
1: पीपल आर लिविंग बीइंग्स, पीपल आर एनर्जी वी आर वर्किंग विद. व्हाट इज अ टारगेट? कुछ भी नहीं है. उन लोगों के बिना आप वैसे भी वो टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो? अगर आपने सबको मार धार के वो टारगेट अचीव भी कर लिया, क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं. वो टारगेट हमें खुशी नहीं देता है. इट इज द प्रोसेस दैट वी गो थ्रू विद आवर टीम टुवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट दैट गिव्स द हैप्पीनेस. एंड दैट्स व्हाई वी सेड हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन कि बस टारगेट अचीव करना है, कैसे भी अचीव कर लो, लोगों को चिल्लाओ मारो परेशान हो, लोग बीमार हो जाएं इन द प्रोसेस, लोगों के परिवार टूट जाएं क्योंकि वो अपना स्ट्रेस ऑफिस का घर कैरी कर रहे हैं. आपको एट द एंड ऑफ द डे खुशी कैसे मिल सकती है? एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग कि हम मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा सक्सेस आज अचीव कर रहे हैं, बहुत टॉप पोजिशंस पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर फिर भी, क्योंकि उस प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते हमने बहुत सारे नुकसान किए इन द प्रोसेस, यू नो, बहुत सारी लीकेजेस हो गई है.
2: और अपना ही,
1: अपना ही, अपना भी और लोगों का भी.
2: इनफैक्ट यहाँ एक और बात, जो एक मिथ्स की हम बात करें, रॉन्ग बिलीफ्स की, गलत मान्यताओं की बात करते हैं. एक तो हमने ये किया कि एंगर जो है दैट इज नेसेसरी, ये हम कह रहे हैं. दूसरा, जब एंगर एंड अथॉरिटी, यू नो, अगर हम बॉस हैं तो हम अथॉरिटी को एंगर से जोड़ रहे हैं,
1: राइट?
2: कि इफ आई एम एंग्री,
1: राइट,
2: आई लुक अथॉरिटेटिव.
1: ट्रू.
2: सो कैन आई बी अथॉरिटेटिव विदाउट गेटिंग एंग्री?
1: व्हाट डू यू थिंक?
2: आई थिंक आई कैन बी.
1: दैट्स ऑल. सी, दैट्स व्हाट इट्स नॉट अबाउट. वी हैव ऑल द आंसर्स. इतने सिंपल आंसर्स हैं हमारे पास, सारे आंसर्स हैं, हमें सारी विधि पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको साइड ट्रैक करते गए. दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, बिकॉज इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट.
2: थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है,
1: स्पेशली जब मेजोरिटी आपके चारों तरफ दूसरी वाली मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन बहुत सैटिस्फाइंग लगेगा.
2: लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए.
1: सिंपली बिकॉज सबसे पहले आपको सुबह उठ के अपने आप से पूछना पड़ेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, उस टारगेट को अचीव करो बाय एनी मीन्स, देन गो एंड डू दैट. अगर आपके जीवन का टारगेट है मुझे खुशी प्राप्त करनी है, देन गो एंड डू दैट. अगर आप सुबह उठ के अपने आप से कहते हो कि मुझे खुशी प्राप्त करनी है, और सारा दिन में आप एक एक कार्य ऐसे करते हो जो आपकी खुशी को सिर्फ गुम कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट राइट डू यू हैव टू से कि आई वांट हैप्पीनेस? यू योरसेल्फ आर चूजिंग ऑल द वर्ड्स एंड एक्शंस व्हिच आर गोइंग टू डिप्राइव यू ऑफ योर हैप्पीनेस. तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज नहीं हम कर सकते. हमें चाहिए ये, तो फिर डायरेक्शन भी तो वही वाले यूज करनी पड़ेंगे. इसीलिए इट्स नेसेसरी टू स्टॉप, पॉज एंड आस्क, व्हाट डू आई वांट? नहीं तो बाय द टाइम द एंड ऑफ द जर्नी इट्स वेरी लेट. इट मे बी पॉसिबल कि एक दिन जो परिवार के लिए आप इतनी मेहनत आज कर रहे हैं, यू आर टेलिंग देम कि यू नो आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, वो शायद मुड़कर कल को आपको कह दें कि हमें ये सब नहीं चाहिए था. हमें चाहिए था कि हम सब प्यार से और खुश रहे, तब हम क्या करें?
2: हो रहा है. एंड देन यू आर वेरी राइट, यू नो, व्हेन वी से कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन हम काम तो उसकी तरफ नहीं कर रहे हैं ना.
1: हम कर रहे हैं ये सब, चलो हमें नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को तो देना चाहते हैं. किसी से भी पूछो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अपने परिवार के लिए, परिवार को क्या देना चाहते हो? खुशी. दे क्या रहे हो सारा दिन? गेम्स, वीडियो गेम्स, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बस खरीद खरीद के सामान दे रहे हैं कि ये लो खुश रहो, ये लो खुश रहो, दे नॉट गोइंग टू बी हैप्पी.
2: अच्छा, और एक और बात, जब टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं हम उनके साथ, बच्चों के साथ, हम ये कह रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम बातें क्या कर रहे होते हैं? यू नो, लाइक अगर हम उनके साथ बैठे भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ में बैठ के टेलीविजन भी देख रहे हैं, तो हम बाकी चीजों से ही भर रहे हैं.
1: बिल्कुल, इट्स नेगेटिविटी. एंड नहीं भी, अगर इफ आई एम जस्ट सिटिंग विद यू एंड आई एम नॉट इवन सेइंग अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोलो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो देन आई एम अ ट्रांसमिटर. आपको मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी, बिना कोई इंटरेक्शन के. आई हैव जस्ट गिवन यू लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टू द चिल्ड्रन. एंड देन वी आर सेइंग हम देना चाहते हैं खुशी. इट इज, I don't know what we are doing actually.
2: It's kind of a vicious circle.
1: Yeah, it's like sara din hum bol kuch aur rahe hain aur kar kuch bilkul contradictory.
2: Kahin na kahin hame action and thought ke beech ka jo ek you know, aur ichha, you know, what we want and what we are doing actually, uske beech ka coordination bithana hai. Shivani, ek anger se juda ek aur jo baat, ek aise galat manyata jo abhi ekdam se baat karte karte mere samne aa rahi hai, wo ye ki किसी ने मेरे साथ गुस्सा किया है तो मुझे गुस्सा करना ही है, अदरवाइज मैं वीक हो जाऊंगा, यू नो, या मैं वीक हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ मारा या मेरी गाड़ी को कर दिया या मेरे साथ बदतमीजी करके गया, तो अगर मैंने बदतमीजी का जवाब नहीं दिया तो ये बदतमीजी और बढ़ती जाए.
1: राइट.
2: लेकिन यहाँ भी लगता ऐसे है कि ये शायद दिस इज नॉट द राइट एक्चुअली थॉट.
1: इफ आई हैव अ चॉइस, आई हैव टू हैव अ चॉइस. फर्स्ट एक बिलीफ है, ये बिलीफ फिर भी सेकंड आएगा कि उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करना ही चाहिए. उससे पहले भी डीप रूटेड है, उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आ ही गया. यू नो, आई डोंट इवन हैव अ चॉइस. मेरे पास चॉइस भी नहीं है. अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि चॉइस है, तो मे बी एटलीस्ट आई विल गिव माय सेल्फ अ सेकंड ऑप्शन.
2: पहला बार उसने किया था,
1: हाँ,
2: you know, तो
1: मुझे गुस्सा आ गया.
2: आना ही था मुझे, तो गुस्सा
1: आना ही था. मैंने गलत क्या किया? उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही था. इट इज लाइक सेइंग कि मैं एक मशीन हूं, उसने बटन दबाया तो रिजल्ट तो होना ही था. ये भूल गए हैं कि आई एम नॉट अ मशीन. एक मशीन का एक फिक्स्ड रिस्पांस होता है, ऑन चलेगी, ऑफ बंद हो जाएगी. एक ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मशीन. एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पांस फिक्स्ड नहीं हो सकता है. आज हमने अपने रिस्पॉन्सेज को फिक्स्ड कर दिया है. वो ऐसा बोलेंगे तो मुझे ऐसा बोलना ही है. देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो सेकेंड चॉइस.
2: हम इनोवेटिव नहीं रहेंगे शायद, you know?
1: We are actually, it's because again, because we are very fast. तो हम लोग को शायद भूल भी गया है कि वो चॉइस का गैप भी आता है.
2: एक्सप्लोर भी कर लें कुछ कुछ और
1: नहीं है. तो इट्स लाइक उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही है, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि बीच में एक गैप है. हम सुनते हैं आपकी बात को, अंदर लेते हैं, उसको कन्फिगर करते हैं, उसको यू नो, उसकी परसेप्शन लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक संकल्प क्रिएट करते हैं, वो एक फीलिंग बनता है, एंड फिर वो वाणी में आता है. इट इज अ प्रोसेस.
2: एंड देन तब तक तो टाइम निकल जाएगा, फिर वो मेरा रिएक्शन.
1: पर ये वैसे भी हो रहा है.
2: मैं ये कह रही हूँ कि लोग अगर ये सोचें तो लोग कहेंगे कि उसके बाद तो फिर मेरे रिएक्शन का फायदा ही क्या रहा.
1: पर अगर ये समझ में आ गया तो रिएक्शन होगा भी नहीं.
2: बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
1: बिल्कुल नहीं होगा.
2: पॉज देयर.
1: राइट. एंड व्हेन आई रिमेम्बर कि मेरे पास एक चॉइस है कि मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते हो. ये जो सबसे बड़ी मान्यता है कि दूसरा मुझे गुस्सा दिलाता है, दिस इज द Maybe I feel the biggest wrong belief system.
2: I have a very interesting email इसी से जुड़ी हुई और ये बैंगलोर से श्रुति ने हमें भेजी है. और इसी यही बात जो हम आज कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई है शिवानी. ये कि ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर रह रहे हैं एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप. लेकिन मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था. अब मैं इस तरह के प्रोग्राम देख देख के अपने गुस्से पे कंट्रोल करती हूँ. मैं बहुत रिएक्ट करती थी और यूजुअली ये होता था कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाता था कि मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए मैं उस पर रिएक्ट कर जाऊंगी. लेकिन अभी पिछले 10 दिन से ऐसा हो रहा था कि वो मुझे कुछ कह रहे थे, मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी लेकिन मैं साइलेंट थी. तो मुझे लगा कि वो मेरे साइलेंस को समझ चुके हैं और यू नो, उसको समझ लेंगे एंड देन ही विल नॉट आस्क मी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डू दैट.
1: ठीक है.
2: लेकिन हुआ ये कि अभी मैं इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई है कि कल ही उन्होंने लिखा है कि कल ही मेरे साथ ये हुआ कि उनका कॉल आया, फिर वही बात की उन्होंने. पहली बार मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, उसे बात नहीं की, कोई और बात शुरू करके खत्म की क्योंकि गुस्सा ना करूं. लेकिन एक घंटे बाद फिर वही बात हुई एंड दिस टाइम आई ब्लास्टेड, यू नो, मैंने वो गुस्से को, और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश की थी गुस्सा नहीं करूंगी. और लेकिन उसका रिएक्शन ये है कि पहले, क्योंकि फिर मुझे ही सॉरी कहना पड़ता था, यहाँ मुझे सॉरी नहीं, ये भी एक चेंज आया है मेरे लाइफ में कि he only called me back.
1: Okay.
2: Because he understood ki he asked me ki what was wrong with you.
1: Mm-hmm.
2: So it means, you know, this is one change which I want to know why this happened.
1: Right.
2: And why I couldn't control my anger.
1: True. One change why this happened. Ke pehle to shayad आपको ही सॉरी बोलना पड़ता श्रुति जी को, लेकिन अब ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड ने उनको वो रिस्पॉन्ड किया और पूछा. दैट्स बिकॉज समवेयर द अदर पर्सन इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि पहले तो ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते थे, अभी एक्चुअली हफ्ते भर से मैं तंग कर रहा था या उस बात को बार बार रिपीट कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं कहा. तो जरूर हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन, एक मार्क जरूर बना रही है. तो दूसरे को जो वो रियलाइजेशन हम लाना चाहते हैं वो उन्होंने वो अपने बिहेवियर से ले आए. अगर वो तुरंत रिएक्ट कर देते पहली बारी में तो दूसरे के ऊपर कोई रियलाइजेशन नहीं होता है उस चीज़ का.
2: सारी जिंदगी में होता ही आ रहा
1: है, वो होता ही आ रहा है. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदा सोचता है कि ये तो है ही ऐसे, मतलब इनको कुछ भी बोलो ये इसी तरह से रिएक्ट करेंगे. लेकिन उनकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसने वो दूसरे को प्रेरित किया ट्रांसफॉर्म होने में, बिकॉज वो रियलाइजेशन आई कि शायद मैंने कुछ गलत किया. यू नो, ये तो 10 दिन से आराम से चल रहे थे, मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया. अब दूसरी बात कि उनको गुस्सा क्यों आया. अगर इफ शी फील्स के नहीं आना चाहिए था एंड 10 डेज नहीं आया तो फिर 11वें दिन क्यों आ गया. तो पहली बात ये कि 10 दिन भी आ रहा था,
2: रोका हुआ था.
1: गुस्से का कितने सारे फॉर्म्स है ना, एक है अंदर ही अंदर हम भर रहे हैं अपने आप को, और फिर 11वें दिन वो निकल आया. और एक है कि हम पहले दिन ही बोल देते थे. तो गुस्सा नहीं करना इज नॉट ओनली एक्सटर्नल, गुस्सा नहीं करना मतलब अंदर भी गुस्सा नहीं आना. अब इन हर केस इट इज सो सिंपल कि जब वो 10 दिन से उनके हस्बैंड उनको एक बात कह रहे थे जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, इंस्टेड ऑफ अक्यूमुलेटिंग इट इनसाइड कितना ईजी होता कि पहले दिन ही बात हो जाती. पहले दिन इफ शी वुड हैव कन्वेड हर मैसेज.
2: बट हाउ, यू नो, लाइक सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज दैट शी इज रिएक्टिव. सो हर बार
1: द डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन एंड अ रिस्पांस, ये दो चीजें हैं. एक है रिएक्शन, इसलिए दो वर्ड्स हैं, एक है रिएक्शन एक है रिस्पांस. रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड, जहां मेरे अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता एंड आई जस्ट रिएक्ट. You know, it could just backfire. मतलब I will just react. उसके बाद I will regret. जैसे अब regret कर रही है because this was a reaction. अब वो regret कर रही है. Response होता है सोच कर, समझ कर एक परिस्थिति को या एक व्यक्ति को respond करना.
2: क्योंकि respond
1: तो करना ना, we are not a wall. हम कोई दीवार नहीं है कि आप आएंगे बोलते जाएंगे और हम बिल्कुल उस पे रिस्पोंड नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप रिस्पोंड नहीं करेंगे तो फिर तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा.
2: फिर एक्शन कैसे होगा?
1: ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोले और हम बस हाँ जी आइए आप बोलते जाइए.
2: लेकिन शी माइट बी थिंकिंग दिस वे, यू नो, कि मेरा साइलेंस विल मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड.
1: साइलेंस विल मेक हिम अंडरस्टैंड इफ शी वुड हैव रिमेंड पॉजिटिव इनसाइड. ये हुआ कि हमने वर्बली गुस्सा नहीं किया लेकिन मेंटली हम फिर भी गुस्सा कर रहे थे. एक जो बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारा रिलेशनशिप्स हमारे वर्ड्स से बनता है और हमारे एक्शन से बनता है, कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए, हमें कैसा सोचना चाहिए. क्योंकि हम सुनते हैं, हम फील करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, जो हम सोच रहे हैं दैट्स ओनली विद मी. नोबडी नोज व्हाट आई एम थिंकिंग, यू नो, आई एम फ्री टू थिंक अबाउट यू व्हाट आई वांट राइट नाउ. व्हाट आई डोंट रियलाइज इज दैट इज बिल्डिंग द रिलेशनशिप. आई थिंक इफ आई एम वेरी स्वीट टू यू, बहुत प्यार से आपसे बोलूंगी तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्यों आपको गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर. लेकिन मैं अंदर से अगर आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, एवरी थॉट इज एन एनर्जी. एनर्जी यहाँ ब्लॉक नहीं रहेगी, एनर्जी ओनली ट्रेवल्स. तो हर संकल्प जो आपके प्रति क्रिएट किया वो कहाँ जाएगा?
2: आप तक तो पहुंचेगा,
1: आप तक ही पहुंचेगा, बिकॉज यू आर द टारगेट. तो वो संकल्प आप तक जाएगा, आपको ट्रिगर करेगा, आपके अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, चाहे वो वर्बल चाहे वो इंटरनल, एंड वो एनर्जी फिर वापस मेरे पास आएगी. ये सारा दिन चल रहा है, दिस इज रिलेशनशिप. एनर्जी एक्सचेंज सारा दिन चल रहा है. ये तो बहुत देर के बाद वो वर्ड्स में आता है. उससे बहुत ज्यादा टाइम तो वो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है इंटरनली. अब वो हस्बैंड बार बार कुछ कह रहे थे, ये मुख से कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन अंदर जो सोच थी वो ठीक नहीं थी. या तो अंदर सोच, इफ शी हैड द पावर टू एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज द एक्शन, कि आपने कहा ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, बट दैट्स ओके, आपने कह दी, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर पार्ट. अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अब अंदर इफेक्ट होता रहा होता रहा, तो इससे अच्छा ये होता कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
2: पहले ही दिल कह दिया जाता
1: और वेरी सोच समझ के. हमें देखो बड़े क्या कहते थे, सोच समझ के फिर करना. हम लोग अब क्या करते हैं, पहले करते हैं
2: फिर सोचते हैं
1: फिर समझते हैं कि ये गलत किया, और फिर सारा दिन उसके ऊपर सोचते रहते हैं, हाँ ये गलत हो गया गलत हो गया. कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना एनर्जी वेस्ट हुई, पहले एक मिनट सोच लिया होता.
2: अच्छा, और फिर हम अल्टीमेटली हमें वही करना पड़ता है क्योंकि हम रिग्रेट में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, जो दूसरे ने कहा होता है, जो हम नहीं करना चाह रहे हो.
1: लेकिन नुकसान कितना हो गया इन द प्रोसेस,
2: पूरा प्रोसेस में नुकसान.
1: तो या तो उतनी पावर हो कि आप बात को सुने समझे एंड फिनिश्ड, यू कैन नॉट अफेक्ट मी,
2: डेफिनेटली
1: दैट्स इट, आई विल मोल्ड मायसेल्फ. या नहीं है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से विदाउट रिएक्टिंग विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड प्रोएक्टिवली दूसरे तक सामने रखें.
2: वंडरफुल. तो सिस्टर शिवानी, आज हमने जो एंगर के यू नो नेगेटिव बिलीफ थे, जो गलत मान्यताएं थी, उन्हें समझने की कोशिश की. और एक बात जो बिल्कुल साफ क्लियर होती जा रही है कि थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो हम, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्शन है, वो तो सब लोगों को, मुझे लगता है कि सबको दिख रहा है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेरी अपनी सोच है. लेकिन नहीं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे जो है हम जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज वी आर एनर्जी, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इटसेल्फ. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हमारे सामने, बहुत सार्थक रही बातचीत. थैंक यू सो मच. अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जवाब तराश रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, कुछ नए मुद्दे उठाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ला रही हैं और हमें बेहतर जिंदगी की तरफ नहीं लेके जाने दे रही हैं, उनके आंसर्स तलाशने की कोशिश करेंगे. मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कबीर साहब की एक खूबी है कि वे कभी भी सत्य को छुपाकर या धीमे स्वर में नहीं कहते। वे भरे बाजार में खड़े होकर सबको सुनाकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है। आज कबीर साहब की ओर से आप सबके लिए एक सीधा संदेश है, सत्य को थामने का। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहा भला होएगा नहीं तर भला न होए। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई।

श्रोताओं, इस दोहे की पहली पंक्ति में कबीर एक साक्षी की तरह खड़े हैं। वे कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, यानी मैं तो निरंतर पुकार रहा हूँ और मेरी बात सबके कानों तक पहुँच भी रही है। लेकिन सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, उनका सीधा संदेश है, राम कहाँ भला होएगा। यहाँ राम का अर्थ उस खट खट वासी चेतना से है, उस परम सत्य से है। यदि उस सत्य को याद रखोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो ही जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन इसके बाद कबीर एक बड़ी चेतावनी देते हैं, नहीं तर भला ना होए। यहाँ नहीं तर का सीधा मतलब है वरना या नहीं तो। कबीर साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बात को अनसुना कर दिया, अगर उस राम तत्व को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा भला किसी और तरीके से नहीं हो सकता। संसार की बाकी तमाम उपलब्धियां तुम्हें सुख तो दे सकती हैं, लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर उससे जीवन में उतारने के बजाय टाल देते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, कबीर की आवाज़ तो सबके दोस्तों कबीर की आवाज़ तो सब तक पहुंच रही हैं, आज आप तक भी पहुंची हैं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या वाकई अपने कल्याण का मार्ग चुन रहे हैं? याद रखिए, नहीं तर यानी अन्यथा पछतावा ही हाथ लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांसे तिमि रजावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछी रतो तेला हो। प्राणी जात दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की। तिमिर अंधेरा, रात, और ये रात जो है वो कब खत्म होगी उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी। देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं रात का। संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं। हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है। रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि देखिए हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं। रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते? रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को। तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है, रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है। अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा। हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं। साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं, और इसलिए विश्व। और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है। राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं। आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया। देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है, और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है, और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है, और राम प्रहर में इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये दुरितांसे तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा? जब सूर्य आएगा। और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितांसे तिमिर जावो, जावो ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो। विश्व, स्वधर्म और सूर्य, कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है।
बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, यह सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आळंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पूना के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए। और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है। और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है, या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में वो आपके साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है। ये एपिसोड मैंने सोचा था कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो उसका कुछ विवेचन चिंतन करे, लेकिन अभी तक हम विश्व स्वधर्म और सूर्य के यहां पहुंचे नहीं है क्योंकि रात ही पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है। और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3:30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं। सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, करेंगे। और फिर अगले एपिसोड में हम विश्व स्वधर्म और सूर्य उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। ये ओवी, ये स्टांजा, ये लाइनर, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू है। सातवें एपिसोड में, सातवें भाग में हमने दुरित क्या है, तिमिर क्या है, अंधेरा, उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा सा विश्व क्या है उसको स्पर्श भी किया। अभी आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। जब भी मैं पसायदान सुनता था या सुनता हूं कभी भी, तब मुझे हमेशा लगता है कि ये पंच लाइन है, विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो। तीन शब्द है, विश्व, स्वधर्म और सूर्य। कौन देखेगा? एक्चुअली ये पंच लाइन का जब आजकल बहुत व्हाट्सएप पे भी पसायदान का मराठी अर्थ आता है, उसमें मैंने देखा कि सारा विश्व जो है वो स्वधर्म रूपी सूर्य से देखे, सूर्य के प्रकाश में देखे, ऐसा कुछ अनुवाद है। विश्व जो है वो स्वधर्म के सूरज जो है उसके प्रकाश में देखे। लेकिन जब मैंने ये अर्थ सुना या पढ़ा, तब मुझे लगा कि माउली को और कुछ बताना है उसमें से। इतना आसान नहीं है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, विश्व स्वधर्म के सूर्य के प्रकाश में क्या देखेगा, किसको देखेगा, और स्वधर्म का सूरज जो है उसका प्रकाश कैसे आएगा। ऐसे कुछ प्रश्न मन में उठे थे और इसलिए मुझे लगा कि और उसमें गहराई से चिंतन होना चाहिए और माउली को क्या अभिप्रेत है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। शायद ये तो मेरा विचार है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप उसके ऊपर चिंतन करिए और डिसाइड करिए। तो विश्व, जो माउली ने शब्द प्रयोग किया विश्व, उसके

जगत जो है वो अर्थ और फिर विश्व क्या है? मुझे लगता है जगत और विश्व में फर्क है। जगत इज कन्फाइंड टू अर्थ और ये पृथ्वी पे जो कुछ जीव जीवाणु जो कुछ जिंदगी है जीवन है उससे ही लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेशन है। लेकिन विश्व में अनलिमिटेड है। उसमें कितने तारे होंगे, कितने सोलर सिस्टम्स होंगे, उसमें अफाट है, अगणित है, अनलिमिटेड है। और ये अनलिमिटेड जो है वही मांगा है माउली ने। जगत नहीं, जगत का शब्द प्रयोग नहीं किया माउली ने, शब्द प्रयोग किया है विश्व का। और ये विश्व में जो ग्रह है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, सोचते हैं ना। इसलिए तो आजकल नवग्रह की अंगूठी है, अलग अलग स्टोन्स है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और हम ये मान्यता है या समझते हैं कि ये ग्रहों का परिणाम हमारी जिंदगी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह जो है कभी इष्ट होते हैं, कभी अनिष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो दूसरा उसका अर्थ ये है कि ये पृथ्वी और ये ग्रह जो है वो अलाइंड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? क्योंकि शायद वो सूरज का इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर अलग अलग आता है, और इसलिए शायद जिंदगी, हमारे जिंदगी के ऊपर उनका इफेक्ट होगा। तो ये अलाइनमेंट जो है, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ये शायद ज्ञानेश्वर जी को, माउली को ये अलाइनमेंट अभिप्रेत होगी। जब ये चेंज हो जाएगा, जब नया युग आएगा, नया संसार आएगा, नई सृष्टि का निर्माण होगा या सतयुग का निर्माण होगा, तब ये सब ग्रह जो है वह अलाइंड होंगे। आपको लगता है? क्योंकि इसी के ऊपर मुझे एक कथा याद आई जो रामायण की कथा है। जब रावण जब थे, रावण तो काफी पढ़े लिखे थे, ऐसे माना जाता है कि रावण दशग्रंथी ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसका गायन नहीं होता है। क्यों? गलत फैसला किया, मोह को जीत नहीं पाया। और यही रावण जो है, ये इतना बड़ा भक्त था और उसने शिवजी से कुछ वर मांगा। और फिर ऐसी कथा है कि उसने क्या किया थे कि ये नवग्रह जो है उनका, उन्होंने पहिए बनाए थे, पहिए मीन स्टेप्स। और जब वो सिंहासन पे बैठ जाता था तब ये पहियों के ऊपर पैर रख के, मीन्स नवग्रहों के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता था। नारद जी देख रहे थे, हैरान हो गए। नारद जी नवग्रह के साथ पास आए और उन्होंने बताया कि आप तो मनुष्य की जिंदगी के ऊपर इतना प्रभाव डालते हैं, आप इतने पावरफुल हो, और ये रावण आपके ऊपर पैर रख के चला जाता है, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीठ के ऊपर रावण पैर रखता है। अगर वो हमारे सीने के ऊपर पैर रखे तो हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी और फिर उसका पतन शुरुआत हो जाएंगे। अभी नारद जी तो है ही, आपको मालूम है नारद जी काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो नारद जी रावण के पास आए, और उन्होंने रावण को बताया कि हे रावण महाबली, आप बहुत बलवान हो और आप बहुत तेज भी हो, आपने पूरे नवग्रह जो है उनके ऊपर, पीठ के ऊपर पैर डाल के आप चढ़ते हो, लेकिन मुझे ये लगता है ये पीठ के ऊपर क्यों पैर डालना है? अगर सचमुच ही आपको अपनी ताकत दिखानी है तो एक्चुअली उनके छाती के ऊपर पैर रखना चाहिए। रावण को बात जची, उसने बोला बिल्कुल नारद जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना महाबली हूं कि नवग्रहों की पीठ के ऊपर क्यों मैं छाती के ऊपर पैर रखूंगा।

क्या हो गया? रावण के रावण ने क्या किया, जो नौ ग्रह थे उनको पलटा दिया और छाती के ऊपर पैर रख के जाना जाने लगा, और उनकी दृष्टि पड़ गई रावण के ऊपर और उनका पतन शुरुआत हो गया। इसलिए हम बोलते हैं दृष्टि में बहुत ताकत है। दृष्टि में जैसी ताकत है, बुरी भी है अच्छी भी है। हम बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हम धन्य हो गए, जाते हैं ना। और हमें अनुभव भी होता है कि ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी दृष्टि में बहुत मिठास है, बहुत खिंचाव है, बहुत प्यार है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है। और कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके दृष्टि देखते ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उनकी नजर ठीक नहीं है, इसलिए बोलते बुरी नजर और अच्छी नजर। तो ये जो कहने का भाव ये था कि विश्व जो है ये नवग्रह भी है और पृथ्वी भी है और सब एक दूसरे से अलाइंड है विश्व। अब ये हमारा क्या है, स्वधर्मे सूर्ये बहु। स्वधर्म क्या है और सूर्य क्या है? धर्म को हमने गलत तरीके से पेश किया है। हम धर्म कहते हैं तो सब सबके कान खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं। लेकिन धर्म और अधर्म, उसका सही मतलब क्या है, धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सूरज, विश्व स्वधर्मे सूर्य बहो, विश्व के ऊपर थोड़ा कुछ चिंतन किया हमने। अभी अगले एपिसोड में हम स्वधर्म क्या है इसके ऊपर करेंगे और फिर सूर्य क्या है उसके ऊपर करेंगे, और तीनों को हम इकट्ठा करेंगे तो फिर माउली को क्या चाहिए, उनका विजन क्या चाहिए, क्या था, इसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जी हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार ऐसे दौराहे या चौराहे आ जाते हैं कि नया रास्ता तलाशने को जी करता है। कई बार लगता है कि हम जिस दौड़ में भागे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं। ऐसे में एक दोस्त चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमें बताए कि भाई सही क्या है और गलत क्या हो सकता है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज ऐसा ही एक प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे गुस्से की, यानी कि एंगर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, आज अगर हम अभी पीछे की अपनी बातचीत को देखें तो हमने टेंशन को देखा था, हमने खुशी तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन एक मुद्दा, एक ऐसी जिंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसी फीलिंग जिसे हम में से हर कोई रोज दो चार हो रहा है, वो है गुस्सा। और एक जो पूरे प्रोसेस की हमने बात की थी कि हमारा जो थॉट जनरेट होता है वही हमारी डेस्टिनी भी लिख सकता है, लिख देता है,
1: लिख ही रहा है,
0: लिख रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे प्रूफ कर दिया था।
1: हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी वो बना रहा है ना, थॉट से पर्सनालिटी बन रही है, और पर्सनालिटी जैसी होगी वो डेस्टिनी है, तो दैट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
0: यस, और पर्सनालिटी जो है वो एक्शंस को भी गवर्न करती है हमारे। तो उसमें जो गुस्सा है वो एक ऐसा इनकॉर्पोरेटेड हिस्सा है। मुझे आज कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो गुस्सा ना होता हो। तो हम सब जानते हैं ये बात कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा नहीं फील करते गुस्सा करने के बाद। लेकिन कुछ रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम चल रहे हैं, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड इन दिस होल डिस्कशन दैट जो रॉन्ग बिलीव्स हैं वही रॉन्ग थॉट जनरेट करते हैं।
1: सो हाउ कैन, वो बहुत पक्की हुई हुई है ना अंदर, तो जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे और चेक करके चेंज नहीं करेंगे तो वो ही तो फाउंडेशन बनी रहेंगी हमारी थॉट प्रोसेस के। तो तब तक वो चीज नेचुरल लगेगी क्योंकि वो फाउंडेशन में है, तो उस फाउंडेशन को कहीं ना कहीं चेक और चेंज करने की जरूरत है।
0: एक सबसे मुझे जो रॉन्ग बिलीव गुस्से से जुड़ा हुआ लगता है, जो हमारे फिर वो थॉट्स को जनरेट करके हमारी डेस्टिनी तक पहुंचता है, वो ये कि गुस्सा तो जायज है। यू नो, मेरे साथ गलत हुआ है तो मतलब, या ये गलत है, मुझे तो गुस्सा आएगा ही, मैं कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो जायज है
1: और गुस्सा आना ही चाहिए। यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स कि गुस्सा तो आना ही चाहिए, गुस्से तो करना ही है, मतलब व्हाट इज द अदर ऑप्शन, वी डोंट इवन हैव अ सेकंड ऑप्शन, मतलब गुस्से के अलावा दूसरा क्या,
0: अगर क्या बचता है, क्या उपाय है, अगर मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं,
1: तो क्या करूं, और कौन सा सोल्यूशन है चीजों को रेक्टिफाई करने का। लेकिन जैसे आपने ही अभी कहा कि हमें गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता, एंड नॉर्मल ह्यूमन नेचर अगर हम देखें तो हम वही चीजें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इवन इफ दे आर रॉन्ग। मतलब जैसे आपने कहा ना कि कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, देयर इज नॉट रियली एनी थिंग लाइक सही एंड गलत, वेरी स्पेसिफिक, हु आर वी टू से कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। कुछ बातें हैं जो विच इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ, यू कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन वो ट्रूथ भी आपके लिए ट्रूथ तब बनता है जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब तक शायद आप भी उसको रॉन्ग मान के चलेंगे। You know? तो तब तक nobody has the authority to tell you कि this is right or this is wrong.
0: No, but somewhere deep within when we feel, right. वो उसको करने के बाद जायज मानते हुए भी जब हम कर रहे हैं,
1: right.
0: तो हमें अच्छा नहीं लग रहा,
1: अच्छा नहीं लगता। तो वो जो फीलिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो वो फिर मेरे लिए राइट नहीं है। अगर किसी को गुस्सा करने के बाद अच्छा लग रहा है, then he should go ahead and do it. You know, it's all about that. Society or anybody else or you and me are nobody to say कि आपको गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को खुद से पूछिए कि करने के बाद आपको कैसा लगता है, एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें अच्छा नहीं लगता है। वेरी रेयरली शायद हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उसे एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं ये तो करना जरूरी था, लेकिन फिर भी करके अच्छा नहीं लगता।
0: अच्छा, एक अभी एक ऐसी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन यही लेते हैं कि कोई एक ऑफिस में है और उनके सबॉर्डिनेट्स हैं और काम नहीं हो पा रहा है, तो वो गुस्सा करेंगे, सब पे चिल्लाएंगे कि भाई क्यों नहीं हुआ, टारगेट्स अचीव करने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, और बाद में जब उनसे बात की जाए या कुछ करें तो कितना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो मैं क्या करता,
1: यू नो,
0: गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। बाद में कहते हो कि आप कहते हो फिर कि गुस्सा कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते थे कि टारगेट्स भी अचीव हो जाए,
1: right.
0: उनके काम भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने यही तरीका सीखा है ना।
1: Right.
0: मतलब उन्होंने कि हमने ही, मैंने भी, right. मतलब सबने, हमारे पास, हम समाज में जिसमें रह रहे हैं,
1: True.
0: हमने यही तरीका सीखा है कि जब जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, मेरा सबॉर्डिनेट काम ही नहीं कर रहा. तो इस सिचुएशन में वो क्या करें कि गुस्सा ना करना पड़े और जो चाहिए वो भी हो जाए.
1: यही जो आपने बात अभी बताई, ये भी तो एक बिलीफ है ना कि गुस्सा इज द ट्रिगर. गुस्सा काम करवाता है, गुस्से के बिना काम नहीं होने वाला है. तो जब तक वो मेरा बिलीफ है, आई विल नॉट इवन ट्राई अनदर ऑप्शन. यू नो, इट्स इतना ग्राउंडेड इनसाइड कि गुस्सा ही काम करवाता है. प्यार से बात करेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे. कोई अपना काम नहीं करेगा, सब आराम से बैठेंगे. पहली बात तो मुझे अपने आप से ये पूछनी पड़ेगी कि जो मेरे सीनियर हैं वो मेरे से किस तरह से बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. क्या गुस्सा मेरे लिए एक ट्रिगर है? अच्छा, कि अगर मेरे से बड़े, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं चाहे वो मेरे सीनियर हैं, जब वो मुझे गुस्से से काम करवाते हैं, डू आई परफॉर्म बेटर?
0: आई डोंट थिंक सो.
1: बिकॉज जैसे ही किसी ने मुझे गुस्सा किया तो पहले तो आई गेट अ लिटल अपसेट, यू नो. तो अब जैसे ही कोई अपसेट हो गया, उसका काम पे से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का कोई मार्जिन नहीं है. वो एक तो अगर वो आपके सीनियर है तो देयर विल बी अ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज. यू नो, आप तो बोल के चले गए, काम भी हम कर देंगे, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि काम हो ही जाएगा, लेकिन कैसे होगा? यू नो, अंदर से इरिटेट होके, कुड़ के, और आपके प्रति कैसा सोच के, नेगेटिव एनर्जी. तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो रिलेशनशिप है, वो नहीं बिल्ट अप हुआ. काम हो गया, no problem. लेकिन over a period of time, I have to understand that what is my aim in life. Sirf kisi bhi tarah kaam karwa lena, matlab by hook or by crook, at the cost of my happiness. Kaam kar bhi kis liye raha hai? Har ek insaan jo us office mein kaam kar raha hai, finally at the end of the day wants happiness. Even the boss and even the junior. To fir hum aise belief system ko incorporate karke kyun kaam kar rahe hain jisse hamari khushi badhne ki bajaye har pal ghatti hui dikhai de rahi hai.
0: Wonderful. No, so and here again, you know, that thought and destiny comes. Like, agar wo jo destiny ye ho gayi ki aapka relationship jo hai apne subordinate ke sath
1: kadwa. Haan, agar aap normally aaj dekhe to corporate sector mein koi bonding kahan hai? You know, जैसे ही आप मुड़कर बाहर गए तो आपके पीठ पीछे, क्योंकि इट इज लाइक ऑफिस, इट इज लाइक आई डोंट लाइक माई बॉस. देर आर वेरी फ्यू बॉसेज जिनके लिए आप कह सकोगे कि आई लाइक माई बॉस, एंड दैट बॉस विल हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. नहीं तो दैट लाइकिंग विल नॉट डेवलप. तो अगर मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझसे गुस्सा करके काम करवाए, तो नेचुरल है दूसरा भी जिससे मैं काम करवाता हूँ उसको भी नहीं अच्छा लगता होगा. मेरे को हर टाइम अपने आप को उस पोजिशन में रखना पड़ेगा, एंड देन आई विल हैव टू सी. अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से ज्यादा अच्छा काम होता है, देन लेट मी यूज दैट वेपन. लेकिन इफ इट डजेंट वर्क, देन आई शुड नॉट. अभी एक हथियार मेरे हाथ में है, इफ आई नो दिस डजेंट वर्क, तो फिर मैं उसी हथियार को क्यों यूज कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर? अगर मेरे से कोई प्यार से काम करवाए, मैं डबल एफिशिएंसी से काम करूंगी. नाउ आई नो देन दैट वेपन वर्क्स, तो व्हाई एम आई यूजिंग द रॉन्ग वेपन?
0: लेकिन अगेन प्यार को वीकनेस समझ लिया जाता है. यू नो, दिस इज अगेन लाइक, मैं समझती हूँ कि एंगर मेरी ताकत है. मतलब अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो बंदा जो है या जो भी सामने वाला है वो समझ जाएगा कि ये गुस्सा है, इसको ज्यादा फिडल नहीं करना है. सो वो फियर जनरेट कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं. तो दूसरी तरफ अगर मैं प्यार कर रही हूँ, मतलब ये एक नॉर्मल, अगेन दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ कि अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो they're taking me for granted, you know. They're not even listening to me. I shout.
1: True, but maybe only for a little time. And one very strong realization is ki agar pyar se kaam nahi ho sakta to gusse se bhi nahi ho sakta. That's for sure. Agar aap pyar se nahi, kyunki aapka mool sanskar to pyar hi hai. किसी का भी, हर एक को प्यार ही अच्छा लगता है, गुस्सा नहीं अच्छा लगता. तो प्यार अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाया कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, तो गुस्सा भी मोटिवेट नहीं कर सकेगा. हाँ, ये डेफिनेटली है कि आपकी रिश्तों में कड़वाहटें आ जाएंगी. ये हो सकता है कि आपने अगर प्यार से काम किया, हो सकता है 0.1% चांस कि आपका काम ठीक नहीं हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर. लेकिन आपकी रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ गई है, और वो बढ़ने से कारण जो नेक्स्ट टारगेट आप पिकअप करेंगे उसमें आप एज ए टीम और भी अच्छा काम करेंगे. एंड यू नो, ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वो टीम की बॉन्डिंग है वो मिरेकल क्रिएट करेंगे. लेकिन अगर हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल देखा कि हमें ये वाला टारगेट अचीव करना है, चाहे किसी भी हालत में अचीव कर लिया, इट वोंट वर्क. लेट्स से इट्स अ टीम, आप एक टीम लीडर हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और करते करते आपने एक महीना बहुत मेहनत की सबने, एंड बस दो दिन पहले समथिंग गोज रॉन्ग, एक क्राइसिस सिचुएशन है. नाउ यू आर द बॉस ऑफ दैट टीम, आपकी मानसिक स्थिति उसमें कैसी होनी चाहिए?
2: स्टेबल.
1: या हम लीडर को ही वो डिफाइन करेंगे कि लीडर वो जो स्टेबल रहे कोई भी चीज में, चाहे वो एक परिवार का लीडर है, कि परिवार में अगर कुछ क्राइसिस आ जाए तो स्टेबिलिटी चाहिए. अब अगर उस टाइम वो टीम लीडर स्टेबल रहता है, अपनी टीम को साथ लेके चलता है एंड प्रायोरिटी अपने लोगों को रखता है, ना कि उस टारगेट
2: को.
1: सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी, प्रायोरिटी काम है, काम टारगेट. मतलब आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग विल फाइंड दिस वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट इट इज द ट्रूथ. प्रायोरिटी शुड बी पीपल,
2: बिकॉज पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म दैट. एक्चुअली
1: पीपल आर लिविंग बीइंग्स, पीपल आर एनर्जी वी आर वर्किंग विद. व्हाट इज अ टारगेट? कुछ भी नहीं है. उन लोगों के बिना आप वैसे भी वो टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो? अगर आपने सबको मार धार के वो टारगेट अचीव भी कर लिया, क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं. वो टारगेट हमें खुशी नहीं देता है. इट इज द प्रोसेस दैट वी गो थ्रू विद आवर टीम टुवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट दैट गिव्स द हैप्पीनेस. एंड दैट्स व्हाई वी सेड हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, कि बस टारगेट अचीव करना है, कैसे भी अचीव कर लो, लोगों को चिल्लाओ मारो परेशान हो, लोग बीमार हो जाएं इन द प्रोसेस, लोगों के परिवार टूट जाएं, क्योंकि वो अपना स्ट्रेस ऑफिस का घर कैरी कर रहे हैं. आपको एट द एंड ऑफ द डे खुशी कैसे मिल सकती है? एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग कि हम मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा सक्सेस आज अचीव कर रहे हैं, बहुत टॉप पोजिशन पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर फिर भी, क्योंकि उस प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते हमने बहुत सारे नुकसान किए इन द प्रोसेस, यू नो, बहुत सारी लीकेजेस हो गई है,
2: और अपना ही,
1: अपना ही, अपना भी और लोगों का भी.
2: इनफैक्ट यहाँ एक और बात, जो एक मिथ्स की हम बात करें, रॉन्ग बिलीफ्स की, गलत मान्यताओं की बात करते हैं. एक तो हमने ये किया कि एंगर जो है दैट इज नेसेसरी, ये हम कह रहे हैं. दूसरा, जब एंगर एंड अथॉरिटी, यू नो, अगर हम बॉस हैं तो हम अथॉरिटी को एंगर से जोड़ रहे हैं,
1: राइट,
2: कि इफ आई एम एंग्री,
1: राइट,
2: आई लुक अथॉरिटेटिव.
1: ट्रू.
2: सो कैन आई बी अथॉरिटेटिव विदाउट गेटिंग एंग्री?
1: व्हाट डू यू थिंक?
2: आई थिंक आई कैन बी.
1: दैट्स ऑल. सी, दैट्स व्हाट इट्स नॉट अबाउट. वी हैव ऑल द आंसर्स. इतने सिंपल आंसर्स हैं हमारे पास, सारे आंसर्स हैं, हमें सारी विधि पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको साइड ट्रैक करते गए. दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, बिकॉज इट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट.
2: थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है,
1: स्पेशली जब मेजोरिटी आपके चारों तरफ दूसरी वाली मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन बहुत सैटिस्फाइंग लगेगा.
2: लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए.
1: सी, सिंपली बिकॉज सबसे पहले आपको सुबह उठ के अपने आप से पूछना पड़ेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, उस टारगेट को अचीव करो बाय एनी मीन्स, देन गो एंड डू दैट. अगर आपके जीवन का टारगेट है मुझे खुशी प्राप्त करनी है, देन गो एंड डू दैट. अगर आप सुबह उठ के अपने आप से कहते हो कि मुझे खुशी प्राप्त करनी है, और सारा दिन में आप एक एक कार्य ऐसे करते हो जो आपकी खुशी को सिर्फ गुम कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट राइट डू यू हैव टू से कि आई वांट हैप्पीनेस? यू योरसेल्फ आर चूजिंग ऑल द वर्ड्स एंड एक्शंस व्हिच आर गोइंग टू डिप्राइव यू ऑफ योर हैप्पीनेस. तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज नहीं हम कर सकते. हमें चाहिए ये, तो फिर डायरेक्शन भी तो वही वाले यूज करनी पड़ेगी. इसीलिए इट्स नेसेसरी टू स्टॉप, पॉज एंड आस्क, व्हाट डू आई वांट? नहीं तो बाय द टाइम द एंड ऑफ द जर्नी इट्स वेरी लेट. इट मे बी पॉसिबल कि एक दिन जो परिवार के लिए आप इतनी मेहनत आज कर रहे हैं, यू आर टेलिंग देम कि यू नो आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, वो शायद मुड़कर कल को आपको कह दें कि हमें ये सब नहीं चाहिए था. हमें चाहिए था कि हम सब प्यार से और खुश रहे, तब हम क्या करें?
2: हो रहा है. एंड देन यू आर वेरी राइट, यू नो, व्हेन वी से कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन हम काम तो उसकी तरफ नहीं कर रहे हैं ना.
1: हम कर रहे हैं ये सब, चलो हमें नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को तो देना चाहते हैं. किसी से भी पूछो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अपने परिवार के लिए. परिवार को क्या देना चाहते हो? खुशी. दे क्या रहे हो सारा दिन? गेम्स, वीडियो गेम्स, यू नो, ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स. बस खरीद खरीद के सामान दे रहे हैं कि ये लो खुश रहो, ये लो खुश रहो. दे नॉट गोइंग टू बी हैप्पी.
2: अच्छा, और एक और बात, जब टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं हम उनके साथ, बच्चों के साथ, हम ये कह रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम बातें क्या कर रहे होते हैं? यू नो, लाइक अगर हम उनके साथ बैठे भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ में बैठ के टेलीविजन भी देख रहे हैं, तो हम बाकी चीजों से ही भर रहे हैं.
1: बिल्कुल, इट्स नेगेटिविटी. एंड नहीं भी, अगर इफ आई एम जस्ट सिटिंग विद यू एंड आई एम नॉट इवन सेइंग अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोलो लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो देन आई एम अ ट्रांसमिटर, आपको मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जी बिना कोई इंटरेक्शन के. आई हैव जस्ट गिवन यू लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. That's what we are doing to the children. And then we are saying, hum dena chahte hain khushi. It is, I don't know what we are doing actually.
2: It's kind of a vicious circle.
1: Yeah, it's like sara din hum bol kuch aur rahe hain aur kar kuch bilkul contradictory.
2: Kahin na kahin hame action and thought ke beech ka jo ek, you know, aur ichha, you know, what we want and right. what we are doing actually. Uske beech ka coordination bithana. Shivani, ek anger se juda ek aur jo baat, ek aise galat manyata jo abhi ekdam se baat karte karte mere samne aa rahi hai, wo ye ki किसी ने मेरे साथ गुस्सा किया है तो मुझे गुस्सा करना ही है, अदरवाइज मैं वीक हो जाऊंगा, यू नो, या मैं वीक हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ मारा या मेरी गाड़ी को कर दिया या मेरे साथ बदतमीजी करके गया, तो अगर मैंने बदतमीजी का जवाब नहीं दिया तो ये बदतमीजी और बढ़ती जाए. लेकिन यहाँ भी लगता ऐसे है कि ये शायद दिस इज नॉट द राइट एक्चुअली थॉट.
1: इफ आई हैव अ चॉइस, आई हैव टू हैव अ चॉइस. फर्स्ट एक बिलीफ है, ये बिलीफ फिर भी सेकंड आएगा कि उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करना ही चाहिए. उससे पहले भी डीप रूटेड है, उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आ ही गया. यू नो, आई डोंट इवन हैव अ चॉइस, मेरे पास चॉइस भी नहीं है. अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि चॉइस है तो मे बी एटलीस्ट आई विल गिव माय सेल्फ अ सेकंड ऑप्शन.
2: पहला बार उसने किया था,
1: हाँ,
2: you know, तो
1: मुझे गुस्सा आ गया,
2: आना ही था मुझे, तो
1: आना ही था. मैंने गलत क्या किया, उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही था. इट इज लाइक सेइंग कि मैं एक मशीन हूं, उसने बटन दबाया तो रिजल्ट तो होना ही था. ये भूल गए हैं कि आई एम नॉट अ मशीन. एक मशीन का एक फिक्स्ड रिस्पांस होता है, ऑन चलेगी, ऑफ बंद हो जाएगी. एक ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मशीन. एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पांस फिक्स्ड नहीं हो सकता है. आज हमने अपने रिस्पांसेस को फिक्स्ड कर दिया है, वो ऐसा बोलेंगे तो मुझे ऐसा बोलना ही है. देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सेकंड चॉइस.
2: हम इनोवेटिव नहीं रहेंगे शायद, यू नो.
1: वी आर एक्चुअली, इट्स बिकॉज अगेन बिकॉज वी आर वेरी फास्ट, तो हम लोग को शायद भूल भी गया है कि वो चॉइस का गैप भी आता है.
2: एक्सप्लोर भी कर लें कुछ कुछ और
1: नहीं है. तो इट्स लाइक उन्होंने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आना ही है, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि बीच में एक गैप है. हम सुनते हैं आपकी बात को, अंदर लेते हैं, उसको कन्फिगर करते हैं, उसको यू नो उसकी परसेप्शन लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक संकल्प क्रिएट करते हैं, वो एक फीलिंग बनता है एंड फिर वो वाणी में आता है. इट इज अ प्रोसेस
2: एंड देन तब तक तो टाइम निकल जाएगा, फिर वो मेरा रिएक्शन.
1: पर ये वैसे भी हो रहा है.
2: मैं ये कह रही हूँ कि लोग अगर ये सोचें तो लोग कहेंगे कि उसके बाद तो फिर मेरे रिएक्शन का फायदा ही क्या रहा.
1: पर अगर ये समझ में आ गया तो रिएक्शन होगा भी नहीं.
2: बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, टेक अ पॉज देयर.
1: राइट, एंड व्हेन आई रिमेम्बर कि मेरे पास एक चॉइस है कि मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना. आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते हो. ये जो सबसे बड़ी मान्यता है कि दूसरा मुझे गुस्सा दिलाता है, दिस इज द Maybe I feel the biggest wrong belief system.
2: I have a very interesting email. इसी से जुड़ी हुई और ये बैंगलोर से श्रुति ने हमें भेजी है और इसी यही बात जो हम आज कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई है शिवानी. ये कि ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर रह रहे हैं एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था. अब मैं इस तरह के प्रोग्राम देख देख के अपने गुस्से पे कंट्रोल करती हूँ. मैं बहुत रिएक्ट करती थी और यूजुअली ये होता था कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाता था कि मेरे को जो चीज नहीं चाहिए मैं उस पर रिएक्ट कर जाऊंगी. लेकिन अभी पिछले 10 दिन से ऐसा हो रहा था कि वो मुझे कुछ कह रहे थे, मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी लेकिन मैं साइलेंट थी. तो मुझे लगा कि वो मेरे साइलेंट को समझ चुके हैं और यू नो उसको समझ लेंगे एंड देन ही विल नॉट आस्क मी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डू दैट. लेकिन हुआ ये कि अभी मैं इसलिए बहुत परेशान हो गई है कि कल ही उन्होंने लिखा है कि कल ही मेरे साथ ये हुआ कि उनका कॉल आया, फिर वही बात की उन्होंने. पहली बार मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, उसे बात नहीं की, कोई और बात शुरू करके खत्म की क्योंकि गुस्सा ना करूं. लेकिन एक घंटे बाद फिर वही बात हुई एंड दिस टाइम आई ब्लास्टेड, यू नो, मैंने वो गुस्से को, और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश की थी गुस्सा नहीं करूंगी. और लेकिन उसका रिएक्शन ये है कि पहले क्योंकि फिर मुझे ही सॉरी कहना पड़ता था, यहाँ मुझे सॉरी नहीं. ये भी एक चेंज आया है मेरे लाइफ में कि He only called me back.
1: Okay.
2: Because he understood ki he asked me ki what was wrong with you.
1: Mm-hmm.
2: So it means, you know, this is one change which I want to know why this happened.
1: Right.
2: And why I couldn't control my anger.
1: True. One change why this happened. Ke pehle to shayad aapko hi sorry bolna padta Shruti ji ko. Lekin ab aisa hua ki unke husband ne उनको वो रिस्पॉन्ड किया और पूछा, दैट्स बिकॉज समवेयर द अदर पर्सन इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि पहले तो ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देते थे, अभी एक्चुअली हफ्ते भर से मैं तंग कर रहा था या उस बात को बार बार रिपीट कर रहा था, इन्होंने कुछ नहीं कहा. तो जरूर हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन, एक मार्क जरूर बना रही है. तो दूसरे को जो वो रियलाइजेशन हम लाना चाहते हैं वो उन्होंने वो अपने बिहेवियर से ले आए. अगर वो तुरंत रिएक्ट कर देते पहली बारी में तो दूसरे के ऊपर कोई रियलाइजेशन नहीं होता है उस चीज़ का.
2: तो सारी जिंदगी में होता ही आ रहा
1: है, वो होता ही आ रहा है. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदा सोचता है कि ये तो है ही ऐसे, मतलब इनको कुछ भी बोलो ये इसी तरह से रिएक्ट करेंगे. लेकिन उनकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसने वो दूसरे को प्रेरित किया ट्रांसफॉर्म होने में, बिकॉज वो रियलाइजेशन आई कि शायद मैंने कुछ गलत किया. यू नो, ये तो 10 दिन से आराम से चल रहे थे, मैंने शायद कुछ ज्यादा कह दिया. अब दूसरी बात कि उनको गुस्सा क्यों आया. अगर इफ शी फील्स के नहीं आना चाहिए था एंड 10 डेज नहीं आया तो फिर 11वें दिन क्यों आ गया. तो पहली बात ये कि 10 दिन भी आ रहा था,
2: रोका हुआ था.
1: गुस्से का कितने सारे फॉर्म्स है ना, एक है अंदर ही अंदर हम भर रहे हैं अपने आप को, और फिर 11वें दिन वो निकल आया. और एक है कि हम पहले दिन ही बोल देते थे. तो गुस्सा नहीं करना इज नॉट ओनली एक्सटर्नल, गुस्सा नहीं करना मतलब अंदर भी गुस्सा नहीं आना. अब इन हर केस इट इज सो सिंपल कि जब वो 10 दिन से उनके हस्बैंड उनको एक बात कह रहे थे जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, इंस्टेड ऑफ अक्यूमुलेटिंग इट इनसाइड, कितना ईजी होता कि पहले दिन ही बात हो जाती. पहले दिन इफ शी वुड हैव कन्वेड हर मैसेज,
2: बट हाउ, यू नो, लाइक सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज दैट शी इज रिएक्टिव. सो हर बार
1: द डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन एंड अ रिस्पांस, ये दो चीजें हैं. एक है रिएक्शन, इसलिए दो वर्ड्स हैं, एक है रिएक्शन एक है रिस्पांस. रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड, जहां मेरे अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता एंड आई जस्ट रिएक्ट. You know, it could just backfire. मतलब I will just react. उसके बाद I will regret. जैसे अब regret कर रही है because this was a reaction. अब वो regret कर रही है. Response होता है सोच कर, समझ कर एक परिस्थिति को या एक व्यक्ति को respond करना.
2: And क्योंकि strongly करना
1: ना, we are not a wall. हम कोई दीवार नहीं है कि आप आएंगे बोलते जाएंगे और हम बिल्कुल उस पे रिस्पोंड नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप रिस्पोंड नहीं करेंगे तो फिर तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहेगा.
2: फिर एक्शन कैसे होगा?
1: ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोले और हम बस हाँ जी आइए आप बोलते
2: जाइए.
1: ये हुआ कि हमने वर्बली गुस्सा नहीं किया लेकिन मेंटली हम फिर भी गुस्सा कर रहे थे. एक जो बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारा रिलेशनशिप हमारे वर्ड्स से बनता है और हमारे एक्शन से बनता है, कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए, हमें कैसा सोचना चाहिए. क्योंकि हम सुनते हैं, हम फील करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, जो हम सोच रहे हैं That's only with me. Nobody knows what I'm thinking, you know. I'm free to think about you, what I want right now. What I don't realize is that is building the relationship. I think if I'm very sweet to you, बहुत प्यार से आपसे बोलूंगी, तो मेरा relationship बहुत अच्छा होना चाहिए. क्यों आपको गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर? लेकिन मैं अंदर से अगर आपके लिए negative सोच रही हूँ, every thought is an energy. Energy यहाँ block नहीं रहेगी. Energy only travels. तो हर संकल्प जो आपके प्रति क्रिएट किया वो कहाँ जाएगा?
2: आप तक तो पहुंचेगा.
1: आप तक ही पहुंचेगा बिकॉज यू आर द टारगेट. तो वो संकल्प आप तक जाएगा, आपको ट्रिगर करेगा, आपके अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, चाहे वो वर्बल चाहे वो इंटरनल, एंड वो एनर्जी फिर वापस मेरे पास आएगी. ये सारा दिन चल रहा है. दिस इज रिलेशनशिप. एनर्जी एक्सचेंज सारा दिन चल रहा है. ये तो बहुत देर के बाद वो वर्ड्स में आता है. उससे बहुत ज्यादा टाइम तो वो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है इंटरनली. अब वो हस्बैंड बार बार कुछ कह रहे थे, ये मुख से कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन अंदर जो सोच थी वो ठीक नहीं थी. या तो अंदर सोच, इफ शी हैड द पावर टू एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज द एक्शन, कि आपने कहा ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, बट दैट्स ओके, आपने कह दी, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर पार्ट. अंदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अब अंदर इफेक्ट होता रहा तो इससे अच्छा ये होता कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
2: पहले ही कह दिया जाता
1: और वेरी सोच समझ के. हमें देखो बड़े क्या कहते थे, सोच समझ के फिर करना. हम लोग अब क्या करते हैं, पहले करते हैं
2: फिर सोचते हैं
1: फिर समझते हैं कि ये गलत किया और फिर सारा दिन उसके ऊपर सोचते रहते हैं, हाँ गलत हो गया गलत हो गया. कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना एनर्जी वेस्ट हुई, पहले एक मिनट सोच लिया होता.
2: अच्छा, और फिर हम अल्टीमेटली हमें वही करना पड़ता है क्योंकि हम रिग्रेट में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं जो दूसरे ने कहा होता है, जो हम नहीं करना चाह रहे हो.
1: लेकिन नुकसान कितना हो गया इन द प्रोसेस,
2: पूरा प्रोसेस में नुकसान.
1: तो या तो उतनी पावर हो कि आप बात को सुने समझे एंड फिनिश्ड, यू कैन नॉट अफेक्ट मी,
2: डेफिनेटली
1: दैट्स इट, आई विल मोल्ड माय सेल्फ. या नहीं है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से विदाउट रिएक्टिंग विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड प्रोएक्टिवली दूसरे तक सामने रखें.
2: वंडरफुल. तो सिस्टर शिवानी, आज हमने जो एंगर के यू नो नेगेटिव बिलीफ थे, जो गलत मान्यताएं थी, उन्हें समझने की कोशिश की. और एक बात जो बिल्कुल साफ क्लियर होती जा रही है कि थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो हम, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्शन है वो तो सब लोगों को, मुझे लगता है कि सबको दिख रहा है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तो मेरी अपनी सोच है. लेकिन नहीं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे जो है हम जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स बिकॉज वी आर एनर्जी, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इटसेल्फ. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हमारे सामने बहुत सार्थक की रही बातचीत. थैंक यू सो मच. अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जवाब तराश रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, कुछ नए मुद्दे उठाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ला रही हैं और हमें बेहतर जिंदगी की तरफ नहीं लेके जाने दे रही हैं, उनके आंसर्स तलाशने की कोशिश करेंगे. मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.